ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। ईरान का कहना है कि वो उस वक्त तक अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं करेगा जब तक वाशिंगटन उसके लिए मुआवजा अदा नहीं करता, जिसे ईरान मफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार देता है। इतवार के रोज एक ईरानी मीडिया आउटलेट ने आबनाए हुरमस को दोबारा खोलने के बारे में वजीर खारजा अब्बास इराकची के रिमार्क्स के बारे में एक रिपोर्ट जारी की। इराकची ने कहा कि ईरान फिलहाल अमरीका के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। उन्होंने इशारा दिया कि ईरान का ख्याल है कि जब तक मुफाहमत की याददाश्त की मुबैना खिलाफ वर्जियों का हल नहीं निकाला जाता और जब तक वाशिंगटन इन खिलाफ वर्जियों के लिए तेहरान को मुआवजा नहीं देता, मुज़ाकरात दोबारा शुरू करना मुमकिन नहीं होगा। इराकची ने यह भी बताया कि ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुरमस में एक नए समुद्री रास्ते के तयन के लिए मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आबनाए को दोबारा खोल दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस आबी गुजरगाह को दोबारा खोलना दीगर शराइत की तकमील से मशरूत है। तुर्की के वजीर खारजा का कहना है कि अंकरा रूस और यूक्रेन पर जोर दे रहा है कि वो बहिरा अस्वद के अंदर और उसके इर्द गिर्द हमलों के तनाजुर में समंदरी हिफाजत को यकीनी बनाए। हाकान फिदान ने हफ्ते के रोज सहाफियों को बताया कि पूरा बहिरा अस्वद उन इलाकों में शामिल हो गया है जहां जंग फैल चुकी है। तुर्की समंदर से मुतसिल ममालिक में से एक है। फिदान ने मजीद कहा कि रूस और यूक्रेन तमाम तजारती जहाजों पर बिला तफरीक हमला कर रहे हैं। तुर्क वजीर खारजा ने इंकशाफ किया कि अंकरा ने बहिरा अस्वद के हमले रोकने के लिए मैकेनिज्म के कयाम के बारे में मास्को और कीफ को आगाह किया है। फिदान ने दोनों फरीकों पर जोर दिया कि वो लॉजिस्टिक सहूलियात पर अपने बढ़ते हुए हमलों पर तहम्मुल का मुजाहरा करें। ये इकदाम उस वक्त सामने आया जब रूसी अफवाज ने गुज़श्ता माह बहिरा अस्वद की बंदरगाह से मकई ले जाने वाले एक माल बरदार जहाज पर हमला किया था जिसमें कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए थे। इसी माह यूक्रेन का एक ड्रोन रूस में बहिरा अस्वद के एक पुरहजूम साहिल पर गिरा था जिससे 7 अफराद हलाक हो गए थे। इतवार के रोज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि रूसी अफवाज ने बहिरा अस्वद के जनूबी इलाके ओडिशा में रिहायशी इमारतों और एक बंदरगाह पर हमला किया जिसमें 8 अफराद जख्मी हुए। आफात में मलबे तले दबे लोगों को बचाने के लिए बनाए गए रोबोट्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए हफ्ते के रोज कोबे शहर में एक मुकाबला मुनक्किद हुआ। यूनिवर्सिटियों और टेक्निकल कॉलेजेस के तलबा समेत 12 टीमों के रोबोट्स के फंक्शंस और उनकी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी को जांचा गया। मुकाबला करने वालों ने रुकावटों को दूर करने के लिए अपने रोबोट्स को एहतियात से कंट्रोल किया और किसी साने के मकाम से मुशावत रखने वाले 5x6 मीटर के इलाके से इंसानी शक्ल की एक गुड़िया को आहिस्तगी से निकाला। मुंतजिम कमेटी के सरबरा निमी हिरोफूमी ने कहा कि सानियात के असल मकामात और मुकाबले में इस्तेमाल होने वाले मकामात के दरमियान अब भी फर्क है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुकाबला

0: टेक्नोलॉजी की तरक्की और अमला तैयार करने में मदद करेगा।
1: और सामिन, अब आज की अहम खबरों की चंद सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। जापान की मौसमियाती एजेंसी के हुक्काम पीर के रोज मशरकी और मगरबी जापान के लिए एक और झुलसा देने वाले दिन की पेशगोई करते हुए लोगों से हीट स्ट्रोक से बचाव के इकदाम करने का कह रहे हैं। और नागानो प्रीफेक्चर में कीचड़ के सबब पुल टूटने से फंसे तकरीबन 400 अफराद को उस इलाके से निकाला जा रहा है। और ईरान का कहना है कि वो उस वक्त तक अमरीका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं करेगा जब तक वॉशिंगटन उसके लिए मुआवजा अदा नहीं करता जिसे ईरान मुफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार देता है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं। मज़ीद खबरों और वीडियोज़ के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।